0: खुशी खजाने विद आरजे अर्शिता शीला।
1: न्यू केल्ता इदिरा 90.4 FM रेडियो निनादा, इदु जनमनदा नाद तरंगा।